पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा।

भगवान गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते, उनके चरणों की छो प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

तो जानता है, गुरु सूरज के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद किए। दरवाजे खोल।

एक के हरी हरी ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनु एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है क्योंकि जिसदा विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया जिसदा हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसदा हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

मनुख जप भी करदा है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखन दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखदे हैं।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओह ही सच्चा सुख है और ओह ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है। हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर ध्यान।

तेरे गुण इतने हैं, तेरे गुणा नो तू आप ही जानते हैं, तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं, ते मेरे अवगुणा दा भी कोई अंत नहीं। जिन्ना समुद्र विच पानी है, इतने साड़ी विच अवगुण हैं, कृपा कर

तेते अवगुण हमारे दया करो किच मेर उपावो डुब दे पत्थर तारे ज्योड़ा अग्न बराबर तपे पितर वगे काती प्रणवत नानक हो।

वाला नहीं थक गया। संसार साहिब कोलों दाते कोलों दाता लैंदा है सदा।

नारायण कला आधार जग में परवरे। निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट होए ते फिर ओही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रही है ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहे। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सुना गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसीं तां शरीर करके साथों अलग होना लोड़दे हो, असी की करांगे। साहब कहन लगे की चाहुंदे हो कि महाराज दर्शन किदे करांगे, गल्लां किदे नाल करांगे, पूजा किसकी करांगे। साहब कहन लगे पूजा तां तुहानूं मैं पहलां ही इक अकाल दी समझा चुका, पूजा अकाल पुरख दी करनी, मेरा दर्शन करना है तां खालसे दा दर्शन करना, मेरे नाल गल्लां करनियां ने गुरबाणी दी विचार करनी, गुरु के बचना दे अनुसारी होगे, गुरु के बचना नूं ध्यान नाल पढ़ो सुनोगे, गुरु नाल गल्लां करदे जापोगे। इथे भाई साहब कहंदे ओही वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु दा रूप धारण करके प्रगट होया ते फिर शब्द विच समा के बैठ गया ते संगतां विच गुरसिखां विच बैठ गया। जद ऐसा होके बैठा है तां गुरसिखां दी मन्नेगा, साध संगत दी बेनती ते अरदास प्रवान भी करेगा, उन्हां दीआं लोड़ां दा ख्याल भी करेगा। भाई साहब कहिंदे नूं करन कारण समर्थ वाहिगुरु साध संगत दा करे कराए, सारा कुछ उहदे भंडारियां च भरिया पिआ पर साध संगत दा दे दिवाया, साध संगत जिन्हूं चाहे दवा देवे, जो चाहे लै लवे। पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया, पार ब्रह्म गुरु दा रूप होकर के साध संगत विच गुर शब्द बैठा है, जिसनु लोका ने जग भोग जोग ध्यान कर अनेकां कर्मकांडा दे नाल अनेकां जतना दे नाल पूजा परे ना दर्शन पाया, किसे नु लब्भा नहीं, किसे नु दर्शन नसीब नहीं होए, गुरसिखां ने उन्हां नु लभ लिया, संगत विचों लभ लिया, गुरु शब्द विचों लभ लिया, और ऐसा लभिया इन्हें नेड़े हो गए, इन्हां प्यार पा लिया, इन्नी सांझ पा ली, प्यो पुत्रां वांग एक में को हो गए। और फिर एक होर गल, वो जग भोग जोग ध्यान करने वाले तो कई बार संसार नूं छड्ड के बाहर भटकते नजर आए, गुरु का सिख संसार च रहिंदिया होए घर बार च रहिंदिया होए परस्पर सत्कार दा अधिकारी बन के एक दूजे विच सतगुरु दे दर्शन करदा होया एक दूजे पैरी पैंदा नजर आउंदा, और इस संसार च रहिंदिया होया प्रभु दे प्यार नूं मानदिया गुरु दे प्यार नूं मानदिया होया माया विच उदास रखाया। पर एक गल है, जे तां गुरु नाल गल्लां करनियां ने ते गुर शब्द नूं विचारांगे, जे गुरु के नजदीक होना है गुरु नाल विचार दी सांझ पाउणी है, प्यार दी सांझ पाउणी है ते गुर शब्द दी सांझ भी पाउणी पड़ेगी। लेकिन जे कदे गुरु नूं प्रसन्न करना होवे ते महाराज पावन बाणी च कहिंदे ने, साहिब कहिंदे ने गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै जो सिखां नूं लोचै सो गुर खुशी आ, जिहड़ा गुरसिखां नूं प्यार करदा गुरु की खुशी लैंदा, विच संगत हर प्रभ वसै जीओ, इसे संगत गुरसिखां विच वाहिगुरु आप वसदा है, इन्हां दी खुशी गुरु की खुशी पार ब्रह्म दी खुशी। इसे करके गुरमुखां गुरसिखां सत्संगियां ने गुरु प्यार वाले शब्द विचार वाले नाम दी कमाई वाले दी खुशी लैण दा यतन कीता सदा। और भाई साहब पुन भी बड़ा कहंदे, भाई साहब कहंदे ने जे किते गुरसिखां दी सेवा च लग जाइए ना ते गुरु वालों बड़ियां खुशियां प्राप्त होंदियां ने, एडा वड्डा पुन है, जेड़े उसले प्रचंड पुन्नां दीआं गल्लां सन, जेड़े जतन लोग प्रभु प्रसन्नता दे करदे सन, पूजा पाठ पुन दान तीर्थ यात्रा आदि वड्डे वड्डे यज्ञ आदि भाई साहब ने सब नीवें पा दित्ते,

प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमले अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए, जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता। नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसी तरह

बरकत हो गई, शाम वाला फला वाला आंदे जांदे राही दिओ दे थले बैठ के आनंद माणदे हन। उड़दे होए पंछी भी उस दरख्त ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलता है, ते जड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है, पर केड़ा अमृत इस दरख्त का नाम है भाव। जिस तरह फलां वाले दरख्त ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने, इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु दा नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना

श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, ऐ परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत आज दे इंसान कोल चार पैसे आ जाए, कोई थोड़ी बहुत ताकत हो गए, वो समझदा है कि मेरे वर्गा हूं कोई नहीं, यह जड़ी मैं है एहो इंसान नो चैन नाल नहीं बैठन देंगे। आज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और यह भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमे नहीं जाती, उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हौमे की है? मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नूं जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उत्थों प्यार उठ जांदा है, और होमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दिती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नू दुकान ते बठावे ते आखे ले तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दिता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नू जपा और मेरे नाल जोड़। साहब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नू दे रहे हां ताकि लोग सुखी हो सकन, पापा तो झूठ तो वो बच सकन।

मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विचों अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुक

फौवारी बन जा, खनिए बन जा, तो साहिब के नावे ऐ परमेश्वर मैं तेरे दुबारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं, आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते, बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले, नाल बेबे नानकी दे पति

अपनी माता माता तृप्ता नु गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नु देखी तू आई है कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पास भाई अजय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी के पैरों से मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछते ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज के दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखिया बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन पावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंड गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे आ और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल चो मुठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो, बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन ये नहीं हो सकता। सत्संग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा। जिदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा

चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके आ सा संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता ओ ना सिख हो सकता ओ ना मुसलमान ना हिंदू ना ईसाई वो किसी गिनती विच नहीं क्योंकि परमेश्वर ने इंसान

दुनिया विच जा रहे हैं, बंदगी कर, सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना, सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननियां हैं, अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखे, साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने करदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता सत्संग एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ए वखरी गल है इना गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने आ हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नूं लै के आओ शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पूछते ने बेटा किथे चले साहब जी कह लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ये प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओही जानता है जिसने ये प्यार किया भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पर आई जाके अंदर दर्द ना पाए भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब भी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले वीर कि यह प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने उही जाने।

सानू नहीं पता नाम तो किस तरह कुर्बान होई दे, पर तेरा ही शब्द पढ़ के अपने मन की भावना पे प्रगट करने हैं कि असी भी तेरे तो वारी जाने हैं, तेरे तो कुर्बान जाने हैं, तेरे नाम तो कुर्बान जाने हैं, क्योंकि तेरे नाम दे विच सारे सुख हैं।

है तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपण वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई।

जित कर हर कंत ना प्रगटे, पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम, नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम। हर मेलो स्वामी।

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नो

खालसा मेरो भवन भंडारा, खालसा मेरो करत उधारा, खालसा मेरो सर्जन परवारा।

छीन ही की भावत अड़हान की से सुहातन जी को दान दियो इन्हीं को भला अड़हान को दान में लागत नी को आगे फल इन्हीं को दियो जस जग में और दियो सब ठीक को मोह गृह में तनते मनते सिर लो।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता।

बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हों त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजे अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का

और बड़े उद्यम मैं आप ही कर लेना। कई गलत काम मैं बड़े उद्यम करके कीते होंगे, कई बारी मैं बुरे काम को ऊट खलोया। पर जो भगती की गल आई होगी, सतसंगत की गल आई होगी, जो नाम की बाणी की नितनेम की अमृत वेले जागण की, गुरु नाल सांझ पा के रहता च रहण की गल चली होगी, मैं आलस कर गया, मैथों उद्यम नहीं होया। काम ही औखा है, सौखे काम नूं तां सारे हाथ मारदे ने, औखे काम कोई कोई करदा। ते जदों नाना हुंदा होवे, जदों औखा काम ना हुंदा होवे, फिर बंदा किसे नूं आवाज मारदा, आ काम मैथों नहीं हुंदा, जरा हाथ वटाई मेरा। लेकिन भगती दे मामले च असीं किसे नूं आवाज भी किन्नू मारी। जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया, वह अगो आप दुखी। विकारा हथों बहुत बंदे दुखी ने, हैन विरले जेड़े भगती च रते, आप भी तरन जोगे ने, दूजे नूं भी फड़ के तारन जोगे हैं, आप तुरन जोगे ने, दूजे नूं भी तुरन जोगे हैं। पर डर लगता है, पता नहीं कोई बंदा तुरदा होया भी आसरा बन सके कि ना बन सके। ते कई बार ऐसा भी होया, बंदा डुब रहा हो, कच्चा तारू उन्हू बचाउन जावे ते डुबण वाला कच्चे तारू नू जफा मार के उन्हू भी डुब लेदा ना। पक्का तारू होवे उन्हू पता होवे कित्थों फड़ना है, इहदे जफे डुबण वाले दे जफे च नहीं आउणा, इहनू किसे तरीके नाल इहदियां बाहां लत्तां काबू करके किनारे तक ले आउणा, उह तां लै आवेगा। कच्चा तारू अणतारू जिहड़ा थोड़ा बहुत तरना जाणदा होवे, सगों उल्टा आप नाल डुब जांदा। ऐसा ना होवे मैं बुराइयां दा मारिया होवे, किसे भगत नूं बौड़ी करन वास्ते कहां, किसे गुरमुख नूं कहां मेरी भी बांह फड़ लवे, ते ओ अजे अणतारू होवे, ओ मेरी बांह फड़े, मैं उन्हूं फिर माड़े पासे लै तुरां, नहीं क्यों ना मैं तेरा ही लड़ फड़ां। सर्ब कला प्रभ पूर्णो मुकम्मल है तू, हर तरह समर्थ है मेरे बादशाह, मंझ निमाणी।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन, इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहा जंग करन लई, ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है, उस नूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या तां सिखां ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो, तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो, कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख। सुलही का हाथ

चित विच आ जाए, मन विच वस जावे, बड़िया बरकतां। वाहिगुरु दा नाम, प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे, बड़िया वडियाईआं। बड़ा आनंद है कि रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलदा। साडे सारिआं दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह दा हो जांदा, उदो रोमा विचो अमृत चढ़ता है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचो, पूरे शरीर विचो, स्वासा विचो नाम उचरिया भी जांदा है, ते नाम सुनदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचो ते अपने आले दुआले विचो नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना, साहिबंत कहिंदे ने ना जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन हुंदा रहे, ये किवें हो सकता? वो एक अवस्था है।

इस तरह बयान करते हैं, अमले अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए, जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं।

अपने सह दे नाल, अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया है, वो सारयां नूं चंगे लगदे ने। क्यों? जो हर का प्यारा

तीन पल हारे जा। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन्हें पीता वो त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख ने एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज घर विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो

मैं तेरा बाणिया हूं, तू मेरा साहिब है, साथ संगत आई दे इंसान कोल चार पैसे आ जा, कोई थोड़ी बहुत ताकत होवे वो समझदा है कि मेरे वर्गा हूं कोई नहीं। ए जड़ी मैं है एहो इंसान नु चैन नाल नहीं बैठन देंदी। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है,

और जिन्ना ने इस प्यार नु जान लिया उना दा जीवन दुनिया दे राग रंगा तो उत्ते हो जाता है। क्योंकि साहिब जी बयान करते हैं जिन्ना ने नाम दा रस पीता उन्हां नू दुनिया दे झूठे रसां दा फिर मुताज नहीं होना पैंदा। आओ विचार करिए जो इस शब्द की भावना है जो इस शब्द विच प्यार है उस प्यार वल आपां अपना मन जोड़ी रखना है और विचार करिए कि जिन्हां ने प्यार कीता उन्हां दे मन दी तड़प किस तरह दूर होंदी है और किस तरह उन्हां नूं

मेरे नानक दी वरे गंड है कि मेरा नानक आवेगा या हर साल दी तरह ए जन्म दिन भी उड़ीकां विच लंघ जाएगा। बुढ़ा बाबा कालू अखां विच अथरू भर के कहन लगे तृप्ता इन्ना लाडला पुत्र है मेरा नानक ओनू दुनिया दा फिकर है दुनिया दे उधार वास्ते कारोबार दे सुख छड़ के दुनिया नू सुख देण वास्ते तुरे है पर साड़ियां अखां ओनू देखण वास्ते तरसदियां ने। हर साल इस दिन दी उड़ीक करदे हां कि मेरा नानक आवेगा पर हर साल ए जन्म दिन दा दिन लंघ जांदा है। अथरू केरदे हां उड़ीकदे हां। माता तृप्ता जी कहन लगे पर इस वारी इस तरह महसूस होंदा है कि जिवें मेरा नानक जरूर आवेगा इस वारी

मेरे नानक दी वड्डी भैण नानकी आ रही है। नानकी नहीं पहला पहचाने आसी, नानकी नहीं सानू के आसी कि ए अर्शां तू आया है। इसनु पुत्र ना समझो, ए आप आया है।

मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विचों अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, जीए असा तो यह सोचा कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नू भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, तीए जा अपनी मां नू मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो, बड़ी वैराग विच है। धन गुरु नानक साहब, माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे, भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन ये नहीं हो सकता। सत्संग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, साध संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं, बंदगी कर, सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना, सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखना है। ओ पति भी ने, पुत्र भी ने, ओ भरा भी ने, ओ सज्जन मित्र भी ने, ओ गुरु भी ने, ओ पीर भी ने, उन्हां ने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के अस भी अपने मना विच प्यार रखिए। साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

जद कितने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता सात संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ए वखरी गल है इना गल्ला नू कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख ता मनन विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नू किया मरदाने हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नू लैके आओ शहर वासियां नू पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नू वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ही जानता है जिसने ये प्यार किया भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जां के अंतर दर्द ना पाई भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती भगत रविदास भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले दी के ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने।

नाम तो किस तरह कुर्बान होईद है, पर तेरा ही शब्द पढ़ के अपने मन की भावना पर प्रगट करते हैं कि असि भी तेरे तो वारी जाने हैं, तेरे तो कुर्बान जाने हैं, तेरे नाम तो कुर्बान जाने हैं, क्योंकि तेरे नाम दे